0: And you heard there Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, speaking at the CEO's forum, recommitting on the investment plan in India, announcing that there will be, in fact, new investment opportunities, and a senior business delegation from Australia will be visiting India in December this year. Also announcing that first major Australian university will be having one of the first foreign campuses in Gujarat. That's the state of Prime Minister Modi. And now let's cut in Prime Minister Narendra Modi speaking there in Melbourne.
1: My dear friend, Prime Minister Albanese, business leaders of both countries, namaskar. In this hall today,
2: Bharat aur Australia ki business power aur business ambition ke darshan ek saath ho rahe hain. Aap sab ki yahan upasthiti हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है. अब दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ता है. स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है. बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है. साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है. इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है. लेकिन हम यही नहीं रुके रहे, अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया. अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है. फ्रेंड्स, यहां क्लीन एनर्जी से जुड़ी कई कंपनियां उपस्थित हैं. हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं. भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है. ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेज इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं. कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया. हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा. ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं. हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 1 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है। स्टील सेक्टर में हम पहले से मजबूत सहयोगी रहे हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम मिलकर लो कार्बन एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर सकते हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलांगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले। फ्रेंड, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान देना होगा। हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, शहरों, विश्वविद्यालयों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम नई गति दे सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरल के साथ नए अवसर बना सकती है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडिया, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: All right, Prime Minister Narendra Modi speaking at the Australia-India CEO Forum. This is the first important and critical event during Prime Minister Narendra Modi's third visit to Australia. They addressed about the trading ties, about the business opportunities and how there could be possibly more trade and investments in future. Now, both these leaders are taking a selfie, these visuals coming on your screen from Melbourne in Australia.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
4: Bye. Sell, hold, hold.
3: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
5: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
6: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
7: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग अ मीटिंग ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी जूरी आई हैव बीन अ फैन ऑफ एनडीटीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम.
8: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
9: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
10: It's also important that how they are reshaping the industries.
11: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.

0: Place your
1: own. Right now, taken out one body, and that will be examined. One body has been taken out.
2: Abhi andar kitne log atke honge?
1: I think only probability is of 7 and 8 is there. The place we are searching right now, we have narrowed it down. One more body.
3: किस हालात में होगा सब सारे ये लोग अटके हुए हैं?
1: मैं इस बारे में अटकलने नहीं लगा सकता, मैं यही कह रहा था, मैं होप करता हूँ कि वो अलग हो, हमारी पूरी कोशिश है, हालात वहाँ जाके पता लगेंगे।
3: अंदर के हालात क्या है? अंदर के हालात कैसे?
1: पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, पूरे मलबे से दबी हुई है, एंड बॉडीज हमने ट्रेस करी है, 3 के करीब कर ली, जिसमें से एक निकाली है सर, एक को और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो मलबा है मैनुअली निकालेंगे, अगर हम मशीन लगा के निकालेंगे वाइब्रेशन हो जाएगा जिससे कि फर्दर कोलैप्स हो सकते हैं बीम्स।
4: बाकी जो लोग उनकी क्या कंडीशन है, कुछ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश है? सबसे
1: कॉन्टैक्ट तो नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा है, पहले ही मैंने बताया ये कल से ऑपरेशन चल रहा है, तो 4 लोग तो पहले ही निकल गए, 9 को हमने सेफली निकाला है, अभी मतलब 7 या 8 का फिगर चल रहा है।
2: जो पार्किंग में कुछ लोग
1: मतलब अभी 6 to 7 आर देयर प्रोबेबिलिटी इज देयर, वी होप दे आर अलाइव।
4: चैलेंज सबसे बड़ा क्या आ रहा है फिलहाल इस वक्त आपको?
1: चैलेंजेस पूरा जो एक तो ये जो मलबा है, सेकेंडरी कोलैप्स का भी चैलेंज है क्योंकि जरा सा वाइब्रेशन होगा बीम्स दोबारा कोलैप्स हो सकता है, तो हमारे रेस्क्यूअर भी उसमें फंस सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली एक एक करके दूर से ऐसे काम कर रहे हैं कि एक को भेजें, एक को निकालें, एंड वी आर डूइंग द वर्क फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बाय अप्लाइंग वेरियस मैकेनिज्म।
5: जो निकाले गए हैं उनकी कंडीशन,
1: उनकी कंडीशन मेरे ख्याल से जो यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं वो बता पाएंगे, आई डोंट नो।
3: सर पार्किंग में कुछ अटके हुए हैं ऐसे कुछ बताया जा रहा है तो?
1: पार्किंग का मुझे मालूम नहीं, पार्किंग का नहीं है, हमारा एक जो एरिया बताया जा रहा है कैंटीन एरिया, वो
5: कितना
1: यहाँ पे 5 to 6 का बताया गया है फिगर, तो राइट नो होपिंग की 7 to 8 है, इससे ज्यादा तो नहीं है।
3: जवान पार्किंग तक जा चुके हैं?
1: जवान पार्किंग क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली काम हो रहा है हाथ से निकाल के, क्योंकि हम मशीन नहीं अप्लाई कर सकते, मशीन अप्लाई करेंगे पूरा बिल्डिंग पैनकेक कोलैप्स हो जाएगा, तो जो है भी वो पूरा दब जाएगा। समय तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिशें जारी है कि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करें।
4: And now they fear that 7 to 8 individuals are still as of now trapped, and the one who was taken out, he will be taken to the hospital, and after that the doctors will be confirming about his situation. The officials are not commenting on the status right now, but yes, all the efforts are being made, and we also were in fact earlier discussing about how the high technologies are all being used over here. All the equipments have been brought in, say it be the seismic devices, say it be the cameras as well, through which they are trying to establish a communication, and if at all a communication is being established, they are trying to penetrate in that area. But again, as the official mentions, that if they penetrate deep or if there is a lot of movement in this area, then the building might re-collapse. Now all eyes here that

0: Australia will voluntarily return several items of cultural significance to India, previously held in the collections of the National Gallery of Australia and the Art Gallery of New South Wales. Prime Minister Modi, I thank you sincerely, you and your delegation, for your warm engagement. While we are separated by an ocean, we are indeed the closest of friends. Today marks the next era in our partnership, as we are reminded that we need to continue our ongoing work. I invite you, Prime Minister, to deliver your remarks.
1: Thank you. Your Excellency, Prime Minister Albanese, dono deshon ke delegates, media ke saathiyon, namaskar. Melbourne mein mere aur mere delegation ke shandar swagat aur aatithya ke liye main apne mitra Pradhanmantri Albanese ka hardik aabhar vyakt karta hoon. उनके व्यक्तिगत प्रयासों ने, उनके कमिटमेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई और व्यापकता दी है. उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं. फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं. हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं. 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है. अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा. हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे. हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है. इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं. पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है. यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी. न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी. क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है. इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल मिनरल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज

सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आकर मसाला।
9: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
10: Bye. Sell, hold, hold.
9: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
12: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग विद यू ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन, बैंकर्स, यू नो, इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी ज्यूरी। आई हैव बीन अ फैन ऑफ एनडीटीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम।
13: Many of the

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
10: Bye. Sell, hold, hold.
9: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
12: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग विद मी ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स। यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
13: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
14: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
15: It's also important that how they are reshaping the industries.
16: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
9: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
17: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर डायल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
10: Bye. Sell, hold, hold.
9: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: इंडिया इंक्स मोस्ट

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मांग मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों से सरसों।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Two nations, one defining vision. From critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power, and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
11: Bye. Sell. Hold. Hold.
10: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet. Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.

I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Vanakkam, Melbourne. Namaskar, mates. कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है, मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए, इनके सम्मान में। साथियों, इससे पहले मैं दो बार सिडनी में आप सबसे मिला था। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। साथियों, जिस एनर्जी से आप सभी ने, हमारे ओसी फ्रेंड्स ने हम सभी को वेलकम किया है, वो और भी अमेजिंग है। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। साथियों, मैं मेरे मित्र, भारत के मित्र प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनिसी का भी बहुत आभारी हूं। आप सिडनी में भी साथ थे और आज यहां मेलबर्न में भी भारतीय कम्युनिटी के बीच आए हैं, और ये एक प्रकार से फुल सर्कल हो गया है। अहमदाबाद, जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, और मेलबर्न, जहां आइकॉनिक स्टेडियम है, हम दोनों साथ रहे हैं। और साथियों, हम सभी ने देखा है, प्राइम मिनिस्टर अल्बनिसी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी,
और यहां भी आप छा गए। मैं विक्टोरिया की प्रीमियर का भी उनके ऊर्जा भरे शब्दों के लिए, भारत के प्रति इतने स्नेह से उन्होंने जो कहा उसके लिए उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है, नाम जो भी हो,

लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं, शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना? साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई लेकिन भीतर की भारतीयता हमेशा हमेशा जिंदा रही। यहां कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनके घर में कम से कम दो टाइम जोन चलते हैं। यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहां वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। और इस रूटीन के साथ आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। मुझे आप सब पर गर्व है। साथियों, हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला

दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। साथियों, आपने सुना होगा भारत में आजकल वजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है। इसको हमारी जेन जी ड्राइव कर रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगड़ा या भारतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है। कुछ दिन बाद ही मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मैं इसके सफल आयोजन की आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साथियों, आपने भी देखा है भारत ने
मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है

ग्रो मोर। इसलिए साथियों, भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े सवाल देश के सामने थे। कब लॉन्च होगी, कैसे रोल आउट होगा, कितना समय लग जाएगा। हमने 2022 के अंत में 5G रोल आउट करना शुरू किया और आज भारत के 99% डिस्ट्रिक्ट इससे कवर हो चुके हैं। और आपको खुशी होगी दोस्तों, भारत 5G का फास्टेस्ट रोल आउट करने वाले देशों में से एक देश है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारत के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज भारत में हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है, लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं ग्रो मोर। इसलिए हम भारत में नमो भारत रैपिड रेल और वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर। इसलिए आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साथियों, भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। भारत का नागरिक, वी द पीपल, और इन सपनों को एनर्जी दे रहा है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी, यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था ये बताने के लिए कि हां तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भवा अब ये स्थिति नहीं है। अब ज्यादातर काम सेल्फ अटेस्टेशन से ही चल जाता है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई वो भारत में डीजी लॉकर तक पहुंच गई है। एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था जिसमें भारतीय अपने डॉक्यूमेंट्स डीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसमें एक क्लिक में डॉक्यूमेंट शेयर होता है, वेरीफाई होता है, एक्सेप्ट होता है। साथियों, व्यवस्था बनाना एक चीज है, उसे स्केल और सिक्योर फीचर के साथ बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप जानते हैं कि आज भारत में डिजी लॉकर के कितने यूजर हैं? मैं जानता हूं आंकड़ा जरा याद रखना कठिन है। इस वक्त 70 करोड़, यानी 700 मिलियन से ज्यादा डीजी लॉकर यूजर हैं।
और इनमें 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट स्टोर है, 850 करोड़

डिजिटली स्टोर होती है। इससे भारत में डायग्नोसिस और बेहतर हो रहा है और इससे इलाज की व्यवस्था और सुधर रही है। यही नहीं, टेली कंसल्टेशन का चलन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, इससे अभी तक 48 करोड़ यानी 480 मिलियन टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 2.25 लाख से अधिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़े हैं। साथियों, एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी, आप याद कीजिए कितने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे, यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया, हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी, अपने एक्सपर्ट भेजे, हमारी मेडिकल टीम से तेजी से काम शुरू किया। मुझे बहुत संतोष है, इससे अनेक जिंदगियां बच पाई। साथियों, ऐसे ही तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया तब भी भारत ने बहुत तेजी से राहत और बचाव के लिए मदद भेजी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पिछले साल हमने म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, श्रीलंका में साइक्लोन की तबाही हुई तो वहां ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। साथियों, कोरोना काल की यादें भी आज तक हमारे मन में ताजा है। हमने दुनिया भर से भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी अपने अपने घर पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाई, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता, भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में

0: ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं। इनमें लाखों एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस मिशन के तहत भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को, खासतौर पर हमारी बेटियों को ज्यादातर अवसर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से गांव गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है। भारत के एथलीट्स, भारत की टीम्स बेटर से बेस्ट होती जा रही है। साथियों, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है। मुझे पूरा विश्वास है स्पोर्ट्स के क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की पार्टनरशिप का और विस्तार होके रहेगा। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वे शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। साथियों, हम केवल ट्रेडिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अनेक उपलब्धियां हैं, हियरिंग इम्प्लांट, वाईफाई, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, फ्लाइट ब्लैक बॉक्स, सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ऐसे कितने इनोवेशंस हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा रोल रहा है। और आज ये पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही भारत भी अपने साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब चल रही है। ये स्कूल लेवल पर ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार कर रही है। बीते 12 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन मैं नंबर बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप डेटा सुनना चाहेंगे तो बताऊं, आज भारत में 2,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। भारत में हर महीने 4,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं और डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में भी सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनके उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सारे सेक्टर पहले भारत में बंद थे। कुछ साल पहले ही इनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खोला गया और आप देखिए भारत का एक स्पेस स्टार्टअप बहुत जल्द अपने रॉकेट में पहली बार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता और गहरा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में हजारों भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में भी अपने कैंपस खोल रही है। डिकिन और वुलांगोंग यूनिवर्सिटी के कैंपस शुरू हो चुके हैं और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस तरफ आगे बढ़ रही है। और ये केवल नए कैंपस खोलने तक की बात नहीं है, ये दुनिया को स्किल इनोवेटिव टैलेंट देने का ग्लोबल लीडरशिप तैयार करने का भी अभियान है। साथियों, भारत की इतनी सारी बातें मैंने आपके बीच की है, अब मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा। करूं? करोगे? मेरी बात मानोगे? वादा? कुछ समय पहले हमने हमारी प्रवासी कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज की शुरुआत की है। ये क्विज दुनिया को भारत की डायवर्सिटी से परिचित कराती है और साथ ही भारतीय कम्युनिटी के परिवारों को अपनी विरासत से जोड़ती है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर में पार्टिसिपेट किया। अब इस कंपटीशन के 6th एडिशन की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गेमिफाइड मोड में बहुत से कंपटीशन होने जा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के सभी परिवारों से आग्रह करूंगा इसमें जरूर हिस्सा लें, लेकिन साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी, आपके स्कूल में पढ़ने वाले साथियों को, कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों को, उनको भी इस कंपटीशन में जरूर जोड़ें। करेंगे? भूल गए? करेंगे? साथियों, आप सभी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप का एक अलग ही फेज शुरू हो रहा है, इसलिए आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए, आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी और आप सभी साथियों को मेरा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: Prime Minister Narendra Modi there after addressing a massive crowd of 30,000

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर डाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid, what will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
6: 1933। सरसों
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July, only on NDTV Network.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी माँ मस्त दाल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों
6: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा।
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
14: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
15: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
16: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
14: I decode the global pulse, shaping the market mood.
15: I bring insights that help you make decisions that matter.
16: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
14: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: Toronto or from Vancouver, because I know many people. They are funded in Punjab by those people. And there are people behind shadows who want to create a problem.
1: Mr. Benz, you're playing with fire. Why? Final word.
2: Yeah.
1: Elections will come and go. Don't play with fire.
2: Please let me put my word in uninterrupted. First of all, let me state it in most categorical words. We stand for united, secular India. We oppose any ideological state, be it Hindutva or Khalistan or Islamic State. We stand totally committed on that, on a secular, peaceful, harmonious India, united, strong India. I think that should take care of this one. As far as the film is concerned, I am the first one to say that the film is dealing with only one sliver of reality. It is not the whole truth. And everybody is welcome to make a film of an epic.
1: But can Mr. Kalra only be called a human rights activist when he's running a magazine, when he was running a magazine on Khalistan?
2: Can you let me complete, please? When I say I stand for United India, doesn't that answer your question?
1: No, it doesn't. Because I'm talking specifically about the figure of Mr. Kalra. If he's running a magazine called Liberation Khalistan and advocates for Khalistan, can he simply be portrayed as a human rights activist?
2: Can you take a straight answer for an answer? I'm saying I'm opposed to Hindutva, I'm opposed to a Sikh state, I'm opposed to Islamic state.
1: So very respectfully, I don't think there is any kind of comparison there. There is no Hindutva state which is being demanded at any point of time. That being said, I'm simply asking you, today this film shows Mr. Kalra as a human rights activist, purely as a human rights activist. Can somebody who ran a magazine called Liberation Khalistan be portrayed as a pure human rights activist?
2: To the best of my knowledge, that magazine was not his. Well, he is accused of having contributed on human rights in that magazine. The magazine was edited by somebody else, owned by somebody else. That's what I know for a fact.
1: Okay.
2: But even if he contributed to that on human rights, okay. If you say, why contribute to such a magazine? He was contributing even to the other papers here, the nationalist papers. So why were they publishing his things?
1: All right.
2: What I'm saying is, let's all agree that we are all opposed to communalism, the theocratic state idea of any religion, including Sikhism, including Hinduism, including Islam, including anyone.
1: Okay, but can that be taken at face value when you say that Janair Singh Bhindranwale was a saint? Or you seem to condone a statement which called him a saint. I suspect we will hear and talk much, much more of this, unfortunately, in the lead up to the elections. I'm completely out of time now. So thanks very much, gentlemen, for joining me. Shifting focus to Bengal now, where a three-front battle is underway. Eggs continue to be hurled, with the latest target being Mamata Banerjee's rally in Kolkata yesterday. Flying eggs were not the only element of drama. Even slogans of Chor Chor resonated at the rally. Mamata Banerjee's protest march was over the Baruipur incident, where a minor was raped and murdered. This brings us to the second front of the battle, the face-off over the killing of the main accused, Prabhas Bondal, in a police encounter. TMC raised questions, claiming that Bengal was turning into UP 2.0 under Shivendu Adhikari. ED action in an aircraft and chopper-related transaction has become the third flashpoint. The investigating agency has frozen three TMC bank accounts with around 440 crores in them, and the Trinamool has called the action politically motivated. And now the big question is, with all of these fronts opened up against the Trinamool Congress, is this politics of Badla or Badlav in Bengal? Joining me now is Bengal Minister Dilip Ghosh. All right, so what really is happening in West Bengal? Is this the same culture of violence that is now raising its head again? Joining us is West Bengal Minister Dilip Ghosh. Dilip ji, bahut bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Kabhi jo hai virodhi dal unko anda pad raha hai, kabhi kisi ka encounter ho raha hai, kabhi ED ka chhapa pad raha hai. Aapki sarkar pe ilzam hai ki aapne badlav promise kiya tha, badle ki rajneeti zyada ho rahi hai.
3: Isme badlav ki kahan aa gaya? कोई रेपिस्ट है, भाग रहा था, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्या उसको छोड़ दिया जाए? अंडा मार्केट में दाम बढ़ गया है, कम से कम ईंटा तो नहीं मार रहे हैं लोग? हम जब विरोधी में थे, मेरे तो दो दर्जन बार गाड़ी तोड़ा गया है। इस प्रकार कोई इंसिडेंट होता तो कभी हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, रास्ता में से अरेस्ट किया जाता था, गाड़ी रोका जाता था। हम तो सारा विरोधी को छोड़ दिया, जाइए आप लोगों से मिलिए, बात करिए, हम भी इसका विरोध करते, जघन्य घटना। और सरकार ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके जो दोस्त को अरेस्ट कहा भी नहीं था कि ऐसा होता है 24 घंटा में। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए वहां जाकर, सारे मंत्रिमंडल गए, पुलिस के मुखिया पहुंचे, हर प्रकार की कार्रवाई हुई। क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्नों को कर रहे थे लोग, ये गलत काम हुआ। और जब कार्रवाई हो गई फिर इनकाउंटर, तब उल्टा बोलने लगे लोग। क्या चाहते हैं लोग, एक सरकार को क्या करना चाहिए, जस्टिस देने के लिए जो करना चाहिए सब हम कर रहे हैं।
1: ठीक है, हम एनकाउंटर की बात अभी थोड़ी सी देर में करेंगे, पहले अंडे की बात कर लेते हैं। कम से कम ऐसे 150 से 200 ऐसे केसेस हुए हैं कि तृणमूल के नेताओं को अंडे पड़ रहे हैं। क्या आप सच में कह रहे हैं कि अब एक महीने से ज्यादा हो चुका है बंगाल के लोग क्या सिर्फ अपनी जेब में अंडे लेकर के घूम रहे हैं, कि ऐसा हो कि कभी कोई तृणमूल का नेता मिल जाए और उनके जेब से अंडे निकलने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ममता जी की रैली पर भी, जब वो कोर्ट से परमिशन लेकर के रैली कर रही हैं, उस पर भी अंडे मारे जा रहे हैं?
3: देखिए, अरे हमको तो ईटा पत्थर मारते थे जब हम विरोधी थे। हजारों नेता टीएमसी के इतने भ्रष्टाचारी हैं, खाली भ्रष्टाचार नहीं है, इतने अत्याचार किए लोगों के सामने, लोगों के ऊपर, लोग तो उसका प्रतिशोध नहीं ले रहे। आज अगर मॉब लिंचिंग हो जाता, ईटा पत्थर मारते नेता को, पेड़ में बांध के पीटते, तो क्या होता? लोगों का गुस्सा है, लोगों के साथ 15 साल तक इन्होंने अत्याचार किया है। कम से कम ये तो बड़ा इनोवेशन है कि अंडा से ही अपना काम चला लेते लोग। इससे ना कोई इंजोर्ड हो रहा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते, कि कानून में कुछ ऐसा है नहीं कि वो अंडा नहीं मार सकते हैं। तो कम से कम एक तो रास्ता निकाला लोगों ने गुस्सा निकालने के लिए, इतने में मामला निपट जाए तो अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं। और
1: दिलीप जी, आपसे इनोवेशन कैसे कह सकते हैं, किसी के ऊपर इस तरीके से अंडा मारना है तो ये हिंसा ही ना। ठीक है, ये उस तरीके की हिंसा नहीं है, वो भी गलत था जब उसको पत्थर मारे जा रहे थे, जब आपके नेताओं को अटैक किया जा रहा था, जब आपको अटैक किया गया, बट किसी पर अंडा मारना भी उन पर हमला करना ही है ना।
3: अरे किसी को नुकसान हुआ क्या, हॉस्पिटल गया, कोई खून निकला है क्या, वो तो एफआईआर भी नहीं कर सकता है। ये तो चलिए मजाक की बात है, लेकिन आपने कितने वीडियो ऐसा चलाया होगा जहां मॉब लिंचिंग, हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता में पीट पीट के मारा गया, जिंदा आग जला दिया गया, घरों को फूंक दिया गया। 21 का पोस्टपोन वायलेंस जो हुआ, 70,000 लोग बेघर हुए, आज भी लोग घर नहीं आए हैं, गुजरात महाराष्ट्र भाग गए, चुनाव के बाद आ रहे हैं, दुकान लूट लिया गया, आग लगा दिया, 35 महिलाओं की बलात्कार हुई थी, एक केस दर्ज नहीं होता था, एफआईआर नहीं लेता था पुलिस। ये समय को हम पार किया। आज ममता बनर्जी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, सीधा जाओ, उनके पास 4 आदमी नहीं है, वो कहां जाएंगे, कौन उनका स्वागत करेगा? आपने देखा होगा सारे, हम लाइव चल रहा था, उनके खुद के कार्यकर्ता को वो थप्पड़ मार रही थी। भाई क्या हो गया, ऐसे दिमाग खराब हो गया? जो आपको सुरक्षा दे, आपके साथ है, ईमानदार कार्यकर्ता, आप उनको आप सारे हम थप्पड़ मार रहे हैं, दिमाग ठिकाने में है कि नहीं?
1: और जब भी वो पोस्टपोल वायलेंस हुआ था उसका भी विरोध किया गया है, वो मामला कोर्ट में भी गया है, कोर्ट ने उसको रेप्रिमांड भी किया है, पर अब आप कह रहे हैं कि ये हार्मलेस है, ये इनोवेशन है, ये ठीक है, लोगों का बस गुस्सा है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कहा है कि उनकी जो रैली हुई थी बीजेपी ने लोग भिजवा करके नारे भी लगवाए, हाथापाई भी करवाई और अंडे भी पड़वाए। आप इसका समर्थन करते हैं, अंडे मारने का समर्थन करते हैं?
3: लंदन में ये इंसिडेंट हुआ था, वहां लोगों ने उनको विरोध किया था, किसी एक रेस्टोरेंट में वो सभा कर रहे थे, लोगों ने विरोध किया था, क्या था, पोस्टर दिखाए, इतनी भी करने का अधिकार नहीं लोगों का, किसी के ऊपर अत्याचार होता है। वो कौन थे, डॉक्टर थे, उनके मोहल्ले में रहने वाले, जिनको घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, मोहल्ला का पुलिस से बैरिकेड किया गया था, वो लंदन में विरोध किया, वहां के डॉक्टर थे, ये भी नहीं कर सकते हैं क्या? ममता बनर्जी क्या चाहती है, वो सत्ता में रहे तो उन्हीं का चले, वो विरोधी में है उन्हीं का चले, यहाँ तो लोकतंत्र पर कुछ था ही नहीं, पुलिस को ऐसा बनाया गया था, एक एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते थे हम, इतनी इंसिडेंट हुई, लोगों ने जो महिलाएं बलात्कार हुआ था इनके ऊपर, उनके साथ महिला कमीशन की आगे कार्यकर्ता मिले, बोले चलो एफआईआर, बोले देखिए इज्जत गया, अभी जान जाएगा हम और पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये स्थिति थी। इसलिए ममता बनर्जी का कुछ बोलने के लिए नहीं है, भाग्य अच्छा उनका कि बीजेपी का राज है, एक भी किसी व्यक्ति के ऊपर इसने अत्याचार, मतलब शारीरिक निग्रह नहीं किया है, बल्कि 2-3 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, अभी भी जो हिंसा ग्राही थी वो लोग कर रहे थे, उसका नतीजा हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता कौन हो रहे हैं।
1: दिलीप घोषी, ये जो एनकाउंटर हुआ है बरुईपुर में, ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर सरकार बैकफुट पर चली गई थी, जिस जघन्य तरीके से ये रेप हुआ था, फिर मर्डर किया, एक छोटी सी बच्ची का मर्डर कर दिया गया, तो मामले को रफा दफा करने के लिए शायोनी घोष वहां पर गई तो उनको गद्दार गद्दार के नारे सुनने पड़े, शुभेंदु अधिकारी उनको नारे सुनने पड़े, इसीलिए लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए और मामले को खत्म करने के लिए उसको एनकाउंटर कर दिया गया।

0: नहीं, मैं पूछता हूँ, उनको पूछिए जो बोल रहे हैं कि पिछले 30-40 साल में 24 घंटा के अंदर दोषी वाले पकड़े गए, पुलिस ने कार्रवाई की, कई घटना बंगाल में घटा है। आप जानते हैं आरजी करके जो डॉक्टर लड़की के ऊपर जो हुआ था रेप मर्डर, उसको लेके पूरा दुनिया में छिछिकार हुआ, और वहां के 3 ऑफिसर जिन्होंने मामला को दबाया, उनकी माँ के ऊपर जो भी मुंह माया शब्द प्रयोग किए इन पार्टियों के नेताओं ने, और आज हमारी सरकार आते ही 3 IPS ऑफिसर को हमने सस्पेंड किया और रिओपन किया उसका, उस केस का, तो उससे जघन्य केस है क्या? कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोषियों को बचाना, उनके साथ रिलेटेड ऑफिसर थे, नेताओं को बचाना ममता बनर्जी की थी। इतनी बड़ी जन आंदोलन हुआ, निःशब्द हाथ में मोमबत्ती लेके लाखों लोग रास्ता में निकले, और दिनों दिन महीना तक चला आंदोलन, तो ये तो लोगों ने किया था।
1: नहीं, पर वो कह रहे
0: आज
1: हैं कि
0: लोग
1: आपने
0: गुस्सा
1: चुनाव
0: फूट
1: से
0: रहा
1: पहले
0: है।
1: बोला था कि लड़कियां आप 12 बजे के बाद भी निकल पाएंगी, यहाँ तो दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची का रेप हो गया ना। ठीक है, आपने अभी एनकाउंटर कर दिया, अरेस्ट कर दिया, पर वो लड़की सेफ क्यों नहीं थी? जब आपने लड़कियों को ये प्रॉमिस किया था कि आप अंधेरे के बाद बारात 12 बजे के बाद सड़क पर घूम सकोगे।
0: देखिए, 50 साल से बंगाल में कानून व्यवस्था टूटा हुआ, और पिछले 15 साल तो कानून व्यवस्था क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। इस पीढ़ी के जो अभी पिछले 20-30 साल से जो पैदा हुए, उनको मालूम नहीं कि कानून क्या होता है। कुछ भी करो सब सही है, पुलिस पार्टी तुम्हारे साथ है, तो रातों रात कोई तो मैजिक तो नहीं कि स्विच दबा दिया सब चेंज हो जाएगा। होगा, ये जो घटना हुई और कार्रवाई जो है ना, इससे असर होगा और आगे ये घटना कम होगा, रातों रात बंद होगा ये बोलना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार घटना होने से सरकार को जो करना था वो कर देगा।
1: पर
0: लेकिन जो
1: भरूपुर
0: सामाजिक व्याधि है, सामाजिक परिवर्तन का समय लगता है, वो भी होगा धीरे धीरे, जो
1: भरूपुर में आप
0: शासन का
1: बैकफुट
0: प्रमुख
1: पे नहीं
0: भूमिका
1: है,
0: रहता है।
1: वहां पे लोग ने नारेबाजी जो की थी, लोगों की नाराजगी नहीं दिखती है उससे?
0: नहीं, बिल्कुल नाराज होना चाहिए ना, हम भी तो विरोध करते हैं इसका, लेकिन आप 1 साल की पहले की सुन लीजिए, एक बाई इलेक्शन जीता था TMC और जुलूस निकाला था, उसमें एक तमन्ना बोल के 6 साल की लड़की माँ के साथ खड़ा होकर देख रही थी जुलूस, उसको बम मार दिया गया। आप बोलिए उसका क्या प्रतिवाद हुआ? इसको पकड़ा गया, उसका दोषी को अभी हमने पकड़ा 1 साल के बाद। एक बागटी बोल के बीरभूम में 10 बच्चा और महिलाओं को जिंदा जलाया गया था घर के अंदर, क्या हुआ था कार्रवाई? ममता बनर्जी 15 दिन के बाद वहां जाके सभा के करके किसी का नाम बोला, उसको पुलिस पकड़ा, FIR भी नहीं लिया, वो भी संख्यालघु थे, वो भी संख्यालघु तमन्ना भी थी, कोई कार्रवाई नहीं था। आज हमारी पार्टी कार्रवाई करी है, सरकार उससे भी उनको समस्या है, तो हम क्या करें, हम तो अपना काम करेंगे।
1: क्या दिलीप जी, यहाँ पे बंगाल को UP 2.0 बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल महुआ मोर्चा ने यही कहा था कि बस बुलडोजर, बुलेट, एनकाउंटर, ठोक दो, मार दो, यही वाली राजनीति शुरू हो गई है बंगाल के अंदर।
0: हम तो बंगाल को बंगाल और सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा। पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया है कानून ठीक करने के लिए, और इस रास्ते में जो बाधा है उसको हटाएगा पुलिस।
1: हटाएगा पुलिस मतलब किसको हटा देगा?
0: जो बाधा में आएगा, कानून व्यवस्था के सामने जो खड़ा होगा उसके साथ कार्रवाई होगा, पुलिस को जो ठीक लगेगा वही करेगा।
1: क्योंकि कोर्ट, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इन सबके साथ डील करेगा, लेकिन कोर्ट ने भी सख्ती की है, जिस तरीके से जो फोटोज आ रही हैं कि निलंजन दास जैसे कि एक तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको पीटा गया, जो अपराधी अरेस्ट होते हैं, शाहजहां शेख को देखा गया, उसको ऐसे कमर में रस्सी बांध करके घुमाया जा रहा है, जानवरों की तरीके से उनको परेड किया जा रहा है, कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है, ये तो नहीं हो सकता ना सख्त कानून व्यवस्था के नाम पे।
0: नहीं, जहांगीर शाहजहां जैसा क्रिमिनल सालों साल, आइए कभी आप लोग भेजिए प्रतिनिधि, लोगों का इंटरव्यू ने कुछ तो आपने देखे होंगे, चुनाव के समय महिलाएं ने क्या बोल रही थी, उनके साथ क्या किया जाए, रसगुल्ला खिलाया जाए? इतनी बड़ी मानवतावादी तो हम है नहीं भाई, जो क्रिमिनल उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाए, और समाज के सामने करना इसलिए कि आप भी करोगे तो आपके साथ ऐसे ही बर्ताव होगा।
1: और किसी प्रवक्ता को पीटना, ये जो निलंदन,
0: अब ममता बनर्जी सरेआम थप्पड़ मार रही है, उनको कौन अधिकार दिया है? पब्लिक जब आप इसे बाहर होता है कुछ ना कुछ करता ही है, प्रवक्ता मतलब ये है कि किसी के बारे में अनप शनप बकेगा, किसी का मान सम्मान लेके बात करेगा, कौन अधिकार दिया प्रवक्ता को? ये किसी का अधिकार नहीं है।
1: ओके, so you say this is the public's anger which is bursting forth and law and order is going to be top priority for the government, but a triple barreled attack against the opposition, is this a new model being brought into Bengal is the question many people are asking for the time being. Dilip Ghoshi, aapka bahut bahut dhanyabad humse baat karne ke liye.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी माँ मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since
6: 1933. सरसों से सरसों
7: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
8: देश का टायर JK टायर।
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.

0: when I talk about, because this person, the Bhindranwala, specifically mentioned as terrorist in the UAPA proceedings before the Delhi High Court. But that when I mentioned this, SD, Aam Aadmi Party, and all the spokesperson, SDPC spokesperson, already almost shouting against me, and they are saying, "No, this is his son." Mm. When you are talking about the former, no, he's a leader, and he had leader of the Congress party saying that he's a son. That's why I am saying the son. Then it is about right now. Right now, the Bhindranwala is terrorist. That is documented. So accept it.
1: But it's not politically expedient to say that, and that's what it all boils down to. The movie, maybe, you know, you're talking about it in the whole rubric of how we want to let people watch a film about history. Creativity should be given a free run. But ultimately, it boils down to politics. But who will benefit from this? Ashutosh.
2: See, Padmija, first of all, I think the very problematic statement has been made over here. That somebody was having a magazine, Liberation Khalistan. So what you do, you just pick him up and kill him.
1: That should never happen.
2: Build, then it's a very dangerous.
1: Extrajudicial killings can never be condoned.
2: That's what I'm saying. Somebody has said that since he was a supporter of Khalistan, he was running a magazine called Liberation Khalistan, and so his killing is justified. If that is the case, then I think it's a very dangerous thing.
1: No. Who said that?
2: Vineet, I think I heard Vineet.
1: No, Vineet Jindal, do you want to apologize for that? Because that simply cannot be condoned.
0: No, I'm not saying that is on record. That is on air. I am not saying anything like that. If anybody is killing, I am condemning it. I am saying he is the person who is having an ideology of Khalistan.
1: Okay, he is talking about the antecedents of Mr. Khalra and antecedents which were blanked out in the film. Ashutosh, yes, go on.
2: Padmaja, I am only saying is that people are trying to justify.
0: Nobody is trying to justify by
2: different means. Saying that he was having he was supporter of the Khalistan. I didn't disturb. Please listen to me. My only submission is, though I fully support that the film should be shown, and a film cannot be a depiction of the entire picture. It can only talk about one aspect of it. But the issue is very simple. The Punjab right now, people are playing with fire. Punjab had seen dark days. Punjab has seen blood. Not from any angle, there should be any support to Khalistan. Anybody who is indulging into the Khalistan, whether from Canada or from Toronto or from Vancouver, because I know many people, they are funded in Punjab by those people. And there are people behind shadows who want to create a problem.
1: Mr. Benz, you are playing with fire. Final word. Elections will come and go. Don't play with fire.
3: Please let me put my word in uninterrupted. First of all, let me state it in most categorical words. We stand for united, secular India. We oppose any ideological state, be it Hindutva or Khalistan or Islamic State. We stand totally committed on that, on a secular, peaceful, harmonious India, united, strong India. I think that should take care of this one. As far as the film is concerned, I am the first one to say that the film is dealing with only one sliver of reality. It is not the whole truth. And everybody is welcome to make a film of an epic.
1: But can Mr. Khalra only be called a human rights activist when he's running a magazine, on Khalistan?
3: Can you let me complete, please? When I say I stand for United India, doesn't that answer your question?
1: No, it doesn't. Because I'm talking specifically about the figure of Mr. Khalra. If he's running a magazine called Liberation Khalistan and advocates for Khalistan, can he simply be portrayed as a human rights activist?
3: Can you take a straight answer for an answer? I'm saying I'm opposed to Hindutva, I'm opposed to a Sikh state, I'm opposed to Islamic state.
1: Sir, very respectfully, I don't think there is any kind of comparison there. There is no Hindutva state which is being demanded at any point of time. That being said, I'm simply asking you, today this film shows Mr. Khalra as a human rights activist, purely as a human rights activist. Can somebody who ran a magazine called Liberation Khalistan be portrayed as a pure human rights activist?
3: To the best of my knowledge, that magazine was not his. Well, he is accused of having contributed on human rights in that magazine. The magazine was edited by somebody else, owned by somebody else. That's what I know for a fact.
1: Okay.
3: But even if he contributed to that on human rights, okay, if you say, why contribute to such a magazine? He was contributing even to the other papers here, the nationalist papers. So why were they publishing his things?
1: All right.
3: What I'm saying is, let's all agree that we are all opposed to communalism, the theocratic state idea of any religion, including Sikhism, including Hinduism, including Islam, including anyone.
1: Okay, yes, but can that be taken at face value when you say that Janair Singh Bhindranwale was a saint, or you seem to condone a statement which called him a saint? I suspect we will hear and talk much, much more of this, unfortunately, in the lead up to the elections. I'm completely out of time now. So thanks very much, gentlemen, for joining me. Shifting focus to Bengal now, where a three-front battle is underway. Eggs continue to be hurled, with the latest target being Mamata Banerjee's rally in Kolkata yesterday. Flying eggs were not the only element of drama. Even slogans of Chor Chor resonated at the rally. Mamata Banerjee's protest march was over the Barui-Pur incident, where a minor was raped and murdered. This brings us to the second front of the battle, the face-off over the killing of the main accused, Prabhas Bondal, in a police encounter. TMC raised questions, claiming that Bengal was turning into UP 2.0 under Shivendu Adhikari. ED action in an aircraft and chopper-related transaction has become the third flashpoint. The investigating agency has frozen three TMC bank accounts with around 440 crores in them, and the Trinamool has called the action politically motivated. And now the big question is, with all of these fronts opened up against the Trinamool Congress, is this politics of Badla or Badlav in Bengal? Joining me now is Bengal Minister Dilip Ghosh. All right, so what really is happening in West Bengal? Is this the same culture of violence that is now raising its head again? Joining us is West Bengal Minister Dilip Ghosh. Dilip ji, bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Kabhi jo hai virodhi dal unko anda pad raha hai, kabhi kisi ka encounter ho raha hai, kabhi ED ka chhapa pad raha hai. Aapki sarkar pe ilzam hai ki aapne badlav promise kiya tha, badle ki rajneeti zyada ho rahi hai.
4: Isme badlav ki kahan aa gaya? कोई रेपिस्ट है, भाग रहा था, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्या उसको छोड़ दिया जाए? अंडा मार्केट में दाम बढ़ गया है, कम से कम ईंटा तो नहीं मार रहे हैं लोग? हम जब विरोधी में थे, मेरे तो दो दर्जन बार गाड़ी तोड़ा गया है। इस प्रकार कोई इंसिडेंट होता तो कभी हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, रास्ता में से अरेस्ट किया जाता था, गाड़ी रोका जाता था। हम तो सारा विरोधी को छोड़ दिया, जाइए आप लोगों से मिलिए, बात करिए, हम भी इसका विरोध करते जघन्य घटना। और सरकार ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके जो दोस्त को अरेस्ट कहा भी नहीं था कि ऐसा होता है 24 घंटे में। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए, वहां जाकर सारे मंत्रिमंडल गए, पुलिस के मुखिया पहुंचे, हर प्रकार की कार्रवाई हुई। क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्नों को कर रहे थे लोग, ये गलत काम हुआ। और जब कार्रवाई हो गई फिर इनकाउंटर तब तो उल्टा बोलने लगे लोग। क्या चाहते हैं लोग? एक सरकार को क्या करना चाहिए? जस्टिस देने के लिए जो करना चाहिए सब हम कर रहे हैं।
1: ठीक है, हम एनकाउंटर की बात अभी थोड़ी सी देर में करेंगे, पहले अंडे की बात कर लेते हैं। कम से कम ऐसे 150 से 200 ऐसे केसेस हुए हैं कि तृणमूल के नेताओं को अंडे पड़ रहे हैं। क्या आप सच में कह रहे हैं कि अब एक महीने से ज्यादा हो चुका है, बंगाल के लोग क्या सिर्फ अपनी जेब में अंडे लेकर के घूम रहे हैं कि ऐसा हो कि कभी कोई तृणमूल का नेता मिल जाए और उनके जेब से अंडे निकलने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ममता जी की रैली पर भी, जब वो कोर्ट से परमिशन लेकर के रैली कर रही हैं, उस पर भी अंडे मारे जा रहे हैं?
4: देखिए, अरे हमको तो ईटा पत्थर मारते थे जब हम विरोधी थे। हजारों नेता टीएमसी के इतने भ्रष्टाचारी हैं, खाली भ्रष्टाचार नहीं है, इतने अत्याचार किए लोगों के सामने, लोगों के ऊपर, लोग तो उसका प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। आज अगर मॉब लिंचिंग हो जाता, ईटा पत्थर मारते नेता को, पेड़ में बांध के पीटते तो क्या होता? लोगों का गुस्सा है, लोगों के साथ 15 साल तक इन्होंने अत्याचार किया है। कम से कम ये तो बड़ा इनोवेशन है कि अंडा से ही अपना काम चला लेते लोग। इससे ना कोई इंजोर्ड हो रहा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते, कि कानून में कुछ ऐसा है नहीं कि वो अंडा नहीं मार सकते हैं। तो कम से कम एक तो रास्ता निकाला लोगों ने गुस्सा निकालने के लिए, इतने में मामला निपट जाए तो अच्छी बात है, कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं। और
1: दिलीप जी, आपसे इनोवेशन कैसे कह सकते हैं? किसी के ऊपर इस तरीके से अंडा मारना है तो ये हिंसा ही ना। ठीक है, ये उस तरीके की हिंसा नहीं है, वो भी गलत था जब उसको पत्थर मारे जा रहे थे, जब आपके नेताओं को अटैक किया जा रहा था, जब आपको अटैक किया गया, बट किसी पर अंडा मारना भी उन पर हमला करना ही है ना।
4: अरे किसी को नुकसान हुआ क्या? हॉस्पिटल गया कोई, खून निकला है क्या? वो तो एफआईआर भी नहीं कर सकता है। ये तो चलिए मजाक की बात है, लेकिन आपने कितने वीडियो ऐसा चलाया होगा जहां मॉब लिंचिंग, हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता में पीट पीट के मारा गया, जिंदा आग जला दिया गया, घरों को फूंक दिया, 31 का पोस्टपोन वायलेंस जो हुआ, 70,000 लोग बेघर हुए, आज भी लोग घर नहीं आए हैं, गुजरात महाराष्ट्र भाग गए, चुनाव के बाद आ रहे हैं, दुकान लूट लिया गया, आग लगा दिया, 35 महिलाओं की बलात्कार हुई थी, एक केस दर्ज नहीं होता था, FIR नहीं लेता था पुलिस। ये समय को हम पार किया, आज ममता बनर्जी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, सीधा जाओ, उनके पास चार आदमी नहीं है, वो कहां जाएंगे, कौन उनका स्वागत करेगा। आपने देखा होगा सारे हम लाइव चल रहा था, उनके खुद के कार्यकर्ता को वो थप्पड़ मार रही थी, भाई क्या हो गया, ऐसे दिमाग खराब हो गया, जो आपको सुरक्षा दे, आपके साथ है, ईमानदार कार्यकर्ता, उनको आप सारे हम थप्पड़ मार रहे, दिमाग ठिकाने में है कि नहीं।
1: और जब भी वो पोस्टपोल वायलेंस हुआ था उसका भी विरोध किया गया है, वो मामला कोर्ट में भी गया है, कोर्ट ने उसको रेप्रिमांड भी किया है, पर अब आप कह रहे हैं कि ये हार्मलेस है, ये इनोवेशन है, ये ठीक है, लोगों का बस गुस्सा है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी जो रैली हुई थी बीजेपी ने लोग भिजवा करके नारे भी लगवाए, हाथापाई भी करवाई और अंडे भी पड़वाए, आप इसका समर्थन करते हैं, अंडे मारने का समर्थन करते हैं।
4: लंदन में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां लोगों ने उनको विरोध किया था, किसी एक रेस्टोरेंट में वो सभा कर रहे थे, लोगों ने विरोध किया था, क्या था, पोस्टर दिखाए, इतनी भी करने का अधिकार नहीं लोगों का, किसी के ऊपर अत्याचार होता होता है। वो कौन थे, डॉक्टर थे, उनके मोहल्ले में रहने वाले, जिनको घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, मोहल्ला का पुलिस से बैरिकेड किया गया था, वो लंदन में विरोध किया, वहां के डॉक्टर थे, ये भी नहीं कर सकते हैं क्या, ममता बनर्जी क्या चाहती है, वो सत्ता में रहे तो उन्हीं का चले, वो विरोधी में उन्हीं का चले, यहाँ तो लोकतंत्र पर कुछ था ही नहीं, पुलिस को ऐसा बनाया गया था, एक FIR दर्ज नहीं करा सकते थे हम, इतनी इंसिडेंट हुई, लोगों ने जो महिलाएं बलात्कार हुआ था इनके ऊपर, उनके साथ महिला कमीशन की आगे कार्यकर्ता मिले, बोले चलो FIR करो, बोले देखिए इज्जत गया, अभी जान जाएगा हम और पुलिस स्टेशन जाएगा, ये स्थिति थी, इसलिए ममता बनर्जी का कुछ बोलने के लिए नहीं है, भाग्य अच्छा उनका कि बीजेपी का राज है, एक भी किसी व्यक्ति के ऊपर इसने अत्याचार मतलब शारीरिक निग्रह नहीं किया है, बल्कि 2-3 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, अभी भी जो हिंसा की राजनीति वो लोग कर रहे थे, उसका नतीजा हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे कार्यकर्ता कौन बने।
1: दिलीप घोषी, ये जो एनकाउंटर हुआ है बरुईपुर में, ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर सरकार बैकफुट पर चली गई थी, जिस जघन्य तरीके से ये रेप हुआ था, फिर मर्डर किया, एक छोटी सी बच्ची का मर्डर कर दिया गया, तो मामले को रफा दफा करने के लिए शायोनी घोष वहां पर गई तो उनको गद्दार गद्दार के नारे सुनने पड़े, शुभेंदु अधिकारी उनको नारे सुनने पड़े, इसीलिए लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए और मामले को खत्म करने के लिए उसको एनकाउंटर कर दिया गया।
4: नहीं, मैं पूछता हूँ, उनको पूछिए जो बोल रहे हैं कि पिछले 30-40 साल में 24 घंटा के अंदर दोषी वाले पकड़े गए, पुलिस ने कार्रवाई की, कई घटना बंगाल में घटा है, आप जानते हैं आरजी कर की जो डॉक्टर लड़की के ऊपर जो हुआ था रेप मर्डर, उसको लेके पूरा दुनिया में छिचिकार हुआ, और वहां के 3 ऑफिसर जिन्होंने मामला को दबाया, उनकी माँ के ऊपर जो भी मुंह माया शब्द प्रयोग किए इन पार्टियों के नेताओं ने, और आज हमारी सरकार आते ही 3 IPS ऑफिसर को हमने सस्पेंड किया और रिओपन किया उसका, उस केस का, तो उससे जघन्य केस है क्या, कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोषियों को बचाना, उनके साथ रिलेटेड ऑफिसर थे, नेताओं को बचाना ममता बनर्जी की थी। इतनी बड़ी जन आंदोलन हुआ, निःशब्द हाथ में मोमबत्ती लेके लाखों लोग रास्ता में निकले और दिनों दिन महीना तक चला आंदोलन, तो ये तो लोगों ने किया था।
1: नहीं, पर वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव से पहले बोला था कि लड़कियां आप 12 बजे के बाद भी निकल पाएंगी, यहां तो दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची का रेप हो गया ना, ठीक है आपने अभी एनकाउंटर कर दिया, अरेस्ट कर दिया, पर वो लड़की सेफ क्यों नहीं थी, जब आपने लड़कियों को ये प्रॉमिस किया था कि आप अंधेरे के बाद बारात 12 बजे के बाद सड़क पर घूम सकोगे।
4: देखिए, 50 साल से बंगाल में कानून व्यवस्था टूटा हुआ, और पिछले 15 साल तो कानून व्यवस्था क्या होता है किसी को मालूम नहीं, इस पीढ़ी के जो अभी पिछले 20-30 साल से जो पैदा हुए उनको मालूम नहीं कि कानून क्या होता है, कुछ भी करो सब सही है, पुलिस पार्टी तुम्हारे साथ है, तो रातों रात कोई तो मैजिक तो नहीं कि स्विच दबा दिया सब चेंज हो जाएगा, होगा, ये जो घटना हुई और कार्रवाई जो है ना, इससे असर होगा और आगे ये घटना कम होगा, रातों रात बंद होगा ये बोलना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार घटना होने से सरकार को जो करना था वो कर देगा, लेकिन जो सामाजिक व्याधि है, सामाजिक परिवर्तन का समय लगता है, वो भी होगा धीरे धीरे।
1: बरुईपुर शासन का प्रमुख भूमिका रहता है, वहां पे लोग ने नारेबाजी जो की थी, लोगों की नाराजगी नहीं दिखती है उससे?
4: नहीं, बिल्कुल नाराज होना चाहिए ना, हम भी तो विरोध करते हैं इसका, लेकिन आप एक साल की पहले की सुन लीजिए, एक बाई इलेक्शन जीता था TMC और जुलूस निकाला था, उसमें एक तमन्ना बोल के 6 साल की लड़की माँ के साथ खड़ा होकर देख रही थी जुलूस, उसको बम मार दिया गया, आप बोलिए उसका क्या प्रतिवाद हुआ, इसको पकड़ा गया, उसका दोषी को अभी हमने पकड़ा 1 साल के बाद, एक बागटुई बल के बीरभूम में 10-50 महिलाओं को जिंदा जलाया गया था घर के अंदर, क्या हुआ था कार्रवाई? ममता बनर्जी 15 दिन के बाद वहां जाके सभा के करके किसी का नाम बोला, उसको पुलिस पकड़ा, FIR भी नहीं लिया, वो भी संख्यालघु थे, वो भी संख्यालघु तमन्ना भी थी, कोई कार्रवाई नहीं था। आज हमारी पार्टी कार्रवाई करी है, सरकार उससे भी इनको समस्या है, तो हम क्या करें, हम तो अपना काम करेंगे।
1: क्या दिलीप जी यहाँ पे बंगाल को यूपी 2.0 बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कल महुआ मौर्या ने यही कहा था कि बस बुलडोजर, बुलेट, एनकाउंटर, ठोक दो, मार दो, यही वाली राजनीति शुरू हो गई है बंगाल के अंदर।
4: हम तो बंगाल को बंगाल और सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा। पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया है कानून ठीक करने के लिए, और इस रास्ते में जो बाधा है उसको हटाएगा पुलिस।
1: हटाएगा पुलिस मतलब किसको हटा देगा?
4: जो बाधा में आएगा, कानून व्यवस्था के सामने जो खड़ा होगा उसके साथ कार्रवाई होगा, पुलिस को जो ठीक लगेगा वही करेगा।
1: क्योंकि कोर्ट, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इन सबके साथ डील करेगा, लेकिन कोर्ट ने भी सख्ती की है। जिस तरीके से जो फोटोज आ रही हैं कि निलंजन दास जैसे कि एक तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं, उनको पीटा गया, जो अपराधी अरेस्ट होते हैं, शाहजहां शेख को देखा गया, उसको ऐसे कमर में रस्सी बांध करके घुमाया जा रहा है, जानवरों की तरीके से उनको परेड किया जा रहा है, कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है। ये तो नहीं हो सकता ना सख्त कानून व्यवस्था के नाम पे।
4: नहीं, जहांगीर शाहजहां जैसा क्रिमिनल सालों साल, आइए कभी आप लोग भेजिए प्रतिनिधि, लोगों का इंटरव्यू ने कुछ तो आपने देखे होंगे, चुनाव के समय महिलाएं ने क्या बोल रही थी, उनके साथ क्या किया जाए, रसगुल्ला खिलाया जाए? इतनी बड़ी मानवतावादी तो हम है नहीं भाई, जो क्रिमिनल उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाए। और समाज के सामने करना इसलिए कि आप भी करोगे तो आपके साथ ऐसे ही बर्ताव होगा।
1: और किसी प्रवक्ता को पीटना, ये जो निलंदन,
4: अब ममता बनर्जी सरेआम थप्पड़ मार रही है, उनको कौन अधिकार दिया है? पब्लिक जब आप इसे बाहर होता है कुछ ना कुछ करता ही है। प्रवक्ता मतलब यही है कि किसी के बारे में अनप शनप बकेगा, किसी का मान सम्मान लेके बात करेगा, कौन अधिकार दिया प्रवक्ता को? ये किसी का अधिकार नहीं है।
1: ओके, so you say this is the public's anger which is bursting forth and law and order is going to be top priority for the government, but a triple barreled attack against the opposition, is this a new model being brought into Bengal is the question many people are asking. For the time being, Dilip Ghoshi, aapka bahut bahut dhanyabad humse baat karne ke liye.
5: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
6: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
7: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
8: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
9: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो।
8: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर? नेशनल टीवी पर है आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
9: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
8: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
9: प्रशिक्षण हम हमारे
8: नहीं मांगेंगे
9: सर।
6: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, corporator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
10: Your first move sets the day. And in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
11: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
12: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
10: I decode the global pulse, shaping the market mood.
11: I bring insights that help you make decisions that matter.
12: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
10: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.